ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचकी वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 17 जून बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रिला जैन और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमरीकी मीडिया केंद्र ब्लूमबर्ग ने अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए तैयार

और अमेरिका अधिकतम 60 दिनों के भीतर बातचीत करके अंतिम समझौते पर पहुंचेंगे। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होते ही अमेरिका अपनी नौ सैनिक घेराबंदी हटा लेगा और ईरान के मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि 30 दिनों के भीतर यातायात पूरी तरह से बहाल कर दिया जाएगा। मसौदे के अनुसार ईरान फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच व्यापारिक जहाजों की आवाजाही 30 दिन के भीतर संघर्ष पूर्व स्तर पर लाने के लिए तुरंत कदम उठाएगा। ईरान के परमाणु विकास कार्यक्रम के बारे में दस्तावेज में कहा गया है कि ईरान इस बात को दोहराता है कि वह कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। दस्तावेज के अनुसार ईरान और अमेरिका इस बात पर सहमत हुए हैं कि संवर्धित सामग्री और परमाणु संबंधी अन्य पारस्परिक रूप से सहमत मुद्दों का निपटारा अंतिम समझौते में किया जाएगा। दस्तावेज में कहा गया है कि अमेरिका ईरान पर लगे सभी प्रकार के प्रतिबंधों को अंतिम समझौते के तहत तय समय सीमा के भीतर समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें यह भी कहा गया है कि अमेरिका क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर ईरान के पुनर्वास और आर्थिक विकास के लिए एक व्यापक योजना तैयार करेगा। अब सबका ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि शुक्रवार को इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद समझौता प्रभावी होगा या नहीं। G7 समूह के नेताओं ने एक वक्तव्य जारी कर ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न देश कभी न बनने देने की पुष्टि की है और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में स्वतंत्र आवागमन के अधिकार का समर्थन किया है। फ्रांस के एवियन ले बॉ में बुधवार को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में यह वक्तव्य जारी किया गया। इस वक्तव्य में संघर्ष को समाप्त करने हेतु ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौता ज्ञापन का स्वागत किया गया है। G7 नेताओं ने इस बात की पुष्टि की कि ईरान परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। G7 नेताओं ने इस बात की भी पुष्टि की कि बिना किसी प्रतिबंध या शुल्क के नवहन का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आधारशिला है। इसमें हॉर्मुज में समुद्री यातायात को फिर से शुरू करने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन के नेतृत्व में एक बहुराष्ट्रीय पहल की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। समूह ने यह भी संकल्प लिया कि ऊर्जा आपूर्ति के मार्गों में विविधता लाने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर वैश्विक निर्भरता और उससे उत्पन्न खतरे को कम किया जा सके। G7 नेताओं ने कहा कि वे यूक्रेन के प्रति अपने अटूट समर्थन में एकजुट हैं। उन्होंने इंटरसेप्टर और लंबी दूरी की क्षमताओं की आपूर्ति बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। नेताओं का कहना है कि वे सर्दियों में ऊर्जा की कमी दूर करने के लिए यूक्रेन का समर्थन करेंगे तथा रूस पर उसके तेल और गैस क्षेत्रों सहित प्रतिबंधों को और कड़ा करेंगे। वक्तव्य में पूर्वी और दक्षिण चीन सागर तथा ताइवान जलडमरू मध्य के संदर्भ में यथास्थिति को बदलने के किसी भी एक तरफा प्रयास, विशेष रूप से बल या दबाव के द्वारा किए गए प्रयासों का विरोध किया गया है। बताया जाता है कि वाक्यांश चीन को ध्यान में रखकर शामिल किया गया है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण मई में पश्चिम एशिया से जापान के कच्चे तेल के आयात में भारी गिरावट आई है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 61.9% गिर गया है। इस क्षेत्र से प्राप्त तरलीकृत प्राकृतिक गैस में 72.1% की गिरावट आई, जबकि नेफ्ता सहित तेल श्रेणी के शिपमेंट में 90% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसकी भरपाई के लिए जापान ने अन्य देशों और क्षेत्रों से तेल उत्पादों का आयात किया। अमेरिका से कच्चे तेल का आयात 24% बढ़ गया, जबकि नेफ्ता सहित तेल श्रेणी के शिपमेंट में 6.6 गुना वृद्धि हुई। आसियान क्षेत्र से इसी श्रेणी के आयात में 93.5% की तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। जापान के व्यापार संतुलन में मंत्रालय की मई की रिपोर्ट में तेल आयात के आंकड़े शामिल थे। कुल मिलाकर देश को लगभग 380 अरब येन यानी 23 अरब डॉलर से अधिक का घाटा हुआ।

0: महीनों में पहली बार ये घाटा हुआ है। आयात की मात्रा में गिरावट आई, लेकिन दुनिया भर में बढ़ती कीमतों ने मूल्य को बढ़ा दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया है कि उनके देश ने मॉस्को में स्थित एक तेल रिफाइनरी पर हमला किया है। यूक्रेन ने हाल ही में रूस की तेल सुविधाओं पर हमले किए हैं। जेलेंस्की ने मंगलवार को एक वीडियो जारी किया जिसमें दिखाया गया है कि ईंधन टैंक जैसी संरचनाओं से घिरे एक क्षेत्र में एक ड्रोन के टकराने के तुरंत बाद आग की लपटें और धुआं उठने लगा। अपनी पोस्ट में जेलेंस्की ने दावा किया है कि मॉस्को क्षेत्र ने यूक्रेन की लंबी दूरी की मारक क्षमताओं का पूरा प्रभाव महसूस किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह हमला रूसी हमलों और एक ऐसे युद्ध के लंबे समय तक खिंचने के जवाब में किया गया है जिसे समाप्त हो जाना चाहिए था। मॉस्को के महापौर ने मंगलवार को बताया कि एक ड्रोन ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी परिसर में स्थित एक सुविधा को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। ये रिफाइनरी मध्यवर्ती मॉस्को के रेड स्क्वायर से लगभग 16 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। हाल के दिनों में रूस की तेल संबंधी सुविधाओं पर यूक्रेन द्वारा किए गए लगातार हमलों को स्थगित शांति वार्ता के बीच रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। पश्चिमी जापान में आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षा में निंजा बनने के लिए जापान और विदेशों से 100 से अधिक प्रतिभागियों ने आवेदन किया है। एक शोध समूह हर साल शिगा प्रीफेक्चर के कोका शहर में कोका रियू निंजा प्रमाणन परीक्षा का आयोजन करता है। रविवार को 9 से 76 वर्ष की आयु के लगभग 130 लोगों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। सफल आवेदकों को प्रारंभिक, माध्यमिक या उन्नत स्तर दर्शाते हस्तलिखित प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे। अधिकांश प्रतिभागियों ने अतिरिक्त अंक प्राप्त करने के प्रयास में निंजा की वेशभूषा पहनी थी। प्रारंभिक स्तर के प्रतिभागियों ने निंजा इतिहास पर एक लिखित परीक्षा दी। उन्होंने एक व्यावहारिक परीक्षा भी दी जिसमें उन्हें लगभग 3 मीटर दूर स्थित लक्ष्य पर शुरिकेन यानी निंजा स्टार फेंकना था।
1: इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।